0: विशेषज्ञ डॉक्टर राजेन्द्र कार्की,
1: प्रत्येक दिन सीनियर कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेन्द्र आचार्य, पेट छाती सहित संपूर्ण अंग को भिडियो एक्सरे एनोमली स्कैन कर साथ
2: ही यूएससी तथा गुणस्तरीय लैब सेवा दी।
3: वीरेन्द्र स्वास्थ्य क्लिनिक शुक्ला गंडकी 4 दुलेगौड़ा, संपर्क 0 65 4 14 233
0: 98 6 78 61 887।

छेज कार्यक्रम आदिवासी संसार बीच चुनावी कार्यक्रम प्रस्तुत चुचेरी क्योंमे स्थान थेपदी मेगाहर्ज श्रोतामय नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ शुक्ल गण्डकी नगर समन्वय परिषद आदिवासी समुदाय रे भाषा संस्था निर्देशक जगेर्मा निवे प्रवर्धन लगा उद्देश्य की सहयोग लगाई रखा कार्यक्रम क्योंमे हफ्ताल बे प्रत्येक सोमवार नागर बे को न्यू बजे सरी चुराम समय खेलखाम भिषा पुनः प्रसारण पना मंगलवार नेसर बे न्याय न्यू बजे सरी चुराम समय खेलखाम विशेष नैर तम समुदाय बे रहन सहन भाषा संस्कार निवे संस्कृति बारे बे तान लवे मनोरञ्जन पिबा लबदिमु यो श्रोतामैलाई यो कार्यक्रम खैबा मारिदिमु यहाँलाई फोन कमेन्ट निबे त्रेतेरिन प्रतिक्रिया पिर यहाँलाई सहयोग लखामु यो कार्यक्रम बे त्यहाँ बे श्रृङ्खला विषय तम मैले बे सृजनात्मक बारे

0: 하고.
1: 숨바둘 기람이 계신 무슨 것을 쓰는 사하는서?
0: सर्वप्रथम तो मित्र स्वर को वैष्णव कार्यक्रम को हाजिर को लगी अभी प्राविधिक मित्र को लगी को प्राविधिक मित्र में
1: प्राविधिक मित्र में
0: तब डबल समझना
1: धन्यवाद
0: अभी भर्खर आर जानी हमारे पर्वत को अमृत लोचन भाई अभी टेपू छेत्री अभी त्या पी अब सरला उपासना दीसू अनि जति पनि धर्मराज सुने एफएम सुनेर सर्वप्रथम कति मिठो स्वरको वैष्णव कार्यक्रम सँग हजुरको लागि अनि प्राविधिक मित्रको लागि को हुनुहुन्छ प्राविधिक मित्रमा
1: पनि म आफै छु है त्यही लागि

안 가나겠습니? 아파스 아파스 아파스라. This is Radio Durbara, 102.8 MHz. आज यह कार्यक्रम को यह व्यवसाय विश्राम लगाते हैं संपूर्ण श्रोता साथीलाई कार्यक्रम में फिर भी पुनस्वागत प्रोग्राम रहेको छ। कालिङ कार्यक्रम आज सुन्दर के एपिसोड में रहकर साथीहरुको रोजमा रहेको गीत संगीतका कार्यक्रममा सन्दिता दिदी अब भने पनि समय को अंत तर्फ प्रस्तुतिको कार्यक्रम को निर्धारित समय पनि सकिने बाँकी छ। आज हाम्रा कार्यक्रम नम्रता

युद्ध द्वारा ही 103.5 मेगाहर्ट्ज से 7:50 बजे तक हर हवा का रक्षण पंजीकृत प्रदेश सरकार ने हर उपर अलग कार्यभवन में लय को वातावरण में स्थिरता का कारण उत्तर प्रदेश संकट में पड़े को उन्हीं पलायन होने अवस्था भारत भन्दे न्यूनतम सरकार ने गंभीर चिंता व्यक्त कर आगामी आर्थिक वर्ष 2084 को बजट निर्माण का संदर्भ में गंभीरता को आर्थिक मामला मंत्रालय आईतवार पोखरा में आयोजना गरेको निजी क्षेत्र संघ को अंतर संवाद में उपस्थित हुए सहित नया वर्ष भारतीय खाना पौड़ी को गुनासो गरेको मुख्यमंत्री सुरेन्द्र प्रसाद पांडे आर्थिक मामला मंत्री बीच देशभन्दै नीतिगत सुधार को प्रतिबद्धता पोखरा नूडल्स का अध्यक्ष सुदाम पांडे ने सरकार ने संयुक्त औद्योगिक क्षेत्रलाई वातावरण निःशुल्क बुझाउन पछाएको तिथिले व्यवसायमा त्रास फैलाएको बताउनुभएको छ। त्यस्तो भौगोलिक रूपमा महँगो छमा हतपर्को भागका वायु समानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने र उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी छ। सूर्य नेपालका प्रतिनिधि गौतम यादवले पेट्रोलियम पदार्थमा

0: company that developed the cell. Germany and Italy also promised no behavior in the performance verified from Mali in a day, government to zero upon the capability of the cell to then benefit the cell. Nagarita Munda, Rajita Seva Subita Bata, Bansi Dohiti Tuna, Abangata, Poiti Karan Prasad, and Sunna Putna Nasati Tukuna Sukai Kaji, Dharma Kudira Seva Putan Puri Kudosi Prakatavali, Zanakari Kaji Prasad. Attaku Pahilo Karabar Din Sarvazar Dohoro Antali Pari Prasad, Sarvazar Poiti Teknitse Aso, Sakai Spasmulat, Akpat Antali Pari Ro, Dipasar Satsay, यासी पर्सनलाइज तीन पांच बिंदु मापो की प्रसार नेते संगे एक महीने ये तक उच्च बिंदु मापो की प्रभु वे को बोल सात संगत करते नेते दो हजार सात से सोलह पी बिंदु मापो की प्रभु आज न्यूज़ पॉइंट पाए सभी समूह उपस्थित हो पड़े को मार्च और बीच समूह उपस्थित हो डेट प्रतिशत में उतार लगाए प्रसार आज दो से पैंतीस पचास कंपनी के शेयर पड़े को मार्च अट्ठाईस पचास को घटका सन इससे सात पचास कंपनी के शेयर धनी फटवार पैकेज छेने आज फ्रीस्टाइल हाइपरपावर को शेयर नौ प्रतिशत ले पड़ेगा सर समग्र बाजार बढ़े को दिन बुंगल हाइपरपावर को शेयर दस दशमलव तीन दो प्रतिशत ले पड़ेगा सर आज नेता संगे कारोबार रतन पानी पड़ेगा सर ये जो चार अरब उनचास करोड़ का कारोबार करना आज तीन से बयालीस हजार कंपनी का एक करोड़ पैंतालीस बाकी पचास पांच अरब अंठानबे करोड़ रुपया में केंद्रित करता सर यो कारोबार रकम झण्डै एक महिनाकै धेरै हो यसअघि विशाख पन्ध्र गते छ अर्ब त्रिपन्न करोड रुपियाँको शेयर इन्डेक्स भएको थियो साझा पाँच बजेको ढोबर हाइल साझालाई सकिएको छ समाचार पक्षबाट म श्रेयाग्रह विदा हुने आज चाहन्छु
1: तपाईँको वरिपरि गाउँ टोलका कुनै पनि घटना गतिविधि वा कार्यक्रम बारे हामीलाई जानकारी दिनुहोस् हामी समाचारको रूपमा प्रसारण गर्नेछौ खबर टिपाउन हामीलाई इमेल वा फोन गर्नुहोस् हाम्रो टेलिफोन नम्बर शून्य त्रिसठी चार चौध एक सय वा धुरबारही एफएम एट द रेट जीमेल डट कममा इमेल गर्नुहोस्
2: ए प्रदीप हेर न बिहेको दिन पनि आइसक्यो घर घरमा बनाइहाल्नु पर्ने डिजाइन पनि हेरेकै छैन पोखरासम्म पुग्नु छ त्यही भएर म त हतार हतारमा हिँडेको
3: ल बिहेको घर घरमा बनाउन पोखरा नै जानुपर्छ त यही धुनेगोडाको बन्की बाटो पर्छ नि

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: स्टुडियो टाइम अहिले रातिको 9 बज्यो
2: टाइम चेक को साथ में बनकेवा काली का सुन चांदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पोस चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार गर्नु को साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनि गरिन्छ प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165935301

0: 103.8 अन्तर्मनको आवाज
1: सेक्सन 1 स्टुडियो साइन्चे
2: अहिले बिहानको 5 बज्यो
3: टाइम चेक को साथ में बनकेवा कालिका सुन चाँदी पसल दुलेगौड़ा हेल्पो चोक अपने भवन में छापा वाला सुन का आधुनिक डिजाइन का तैयारी कर गहना राशि अनुसार का पत्थर पाइन अर्डर अनुसार का गहना तैयार कर साथ ही पुरानो गर गहना नया गहना संग साठफेर पनी प्रोपाइटर बाजुराम सुनार विनोद सुनार मोबाइल 98165 95301

0: 63 पद्मश्री हस्पिटल एण्ड अलाइड साइन्सेस न्युरोड पोखरामा अब सबै प्रकारको उपचार सेवा सम्भव छ।
1: बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनोद तुलाचन, प्राध्यापक डाक्टर वन्दना श्रेष्ठ,
0: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर डेला सिंह जोशी, डाक्टर चुम्बाया पुन,
1: फिजिसियन तथा पेट कलेज रोग विशेषज्ञ डाक्टर विकास अधिकारी डाक्टर शंकर बराल,
0: हाड जोड्ने तथा नसा रोग विशेषज्ञ डाक्टर यज्ञमान साक्य, उप प्राध्यापक डाक्टर प्रवीण थापा र हाड जोड्ने नसा रोग विशेषज्ञ तथा आर्थोस्कोपी सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर सुभाष गुरुङ,
1: मोटर रोग विशेषज्ञ डाक्टर तेज बहादुर गुरुङ, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर ऋषि सेचन,
0: युरोलोजिस्ट तथा मृगौला प्रत्यारोपण सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश छेत्री, डाक्टर जुजुराज श्रेष्ठ,
1: नाक कान घाटी तथा थायराइड सर्जन सह प्राध्यापक डाक्टर विकास गुरुङ, छाला विज्ञान भेनेरोलोजी र कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर अस्मिता वाग्ले,
0: रेडियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर मनिष किरण श्रेष्ठ, डाक्टर सुमिरन श्रेष्ठ,
1: एन्टेरियोलोजिस्ट डाक्टर भूपेन्द्र कुमार तुलाचन, प्लास्टिक एण्ड कस्मेटिक सर्जन उप प्राध्यापक डाक्टर पियुष गिरी,
0: एनेस्थेसियोलोजिस्ट उप प्राध्यापक डाक्टर गुरुङ, डाक्टर सुस्मिता गुरुङ,
1: जनरल सर्जन प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, सह प्राध्यापक डाक्टर देवेन्द्र श्रेष्ठ,
0: फिजिसियन डाक्टर अनमोल पौडेल र मनोचिकित्सक डाक्टर मानकाजी थापा मगर।
2: वार्ड आईसीयू एनआईसीयू जनरल एन्ड ल्याप्रोस्कोपी सर्जरी सेवा, पोस्ट अप सेवा, फिजियोथेरापी, इन्डोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, इको, टीएमटी, हल्चर, पीएफटी, युरोफ्लोमेट्री, डायलोसिस सेवा र 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा साथै अन्य विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा सेवा प्रदान गरिएको जानकारी गराउँदछौ।
3: 24 घण्टा प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीको लागि पद्मश्री हस्पिटल एन्ड एलाइड साइन्सेस प्राली, पोखरा 9 न्यू, फोन 061-590-162, 590-163।
4: गुरु सतमा जो महीना सबैलाई हुने गर्छ था,
5: सके पाँचै दिन जाउँ, नसके एक दिन त अवश्य जाउँ। श्री पुरुषोत्तम महात्म्य सत्सङ्ग ज्ञान यज्ञमा सहभागी बनौ।
6: मिति यही जेठ 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म शुक्ल गण्डकी 5 बेल चौतारा झरौटामा।
0: प्रमुख कथावाचक आचार्य पूज्य गुरु श्री ऋषिराम पौडेलको मुखारविन्दबाट संगीतमय पुरुषोत्तम महात्म्य सत्सङ्ग कथा श्रवणका साथै भजन कीर्तन, प्रसाद वितरण, आरती र बेलपत्र अर्पण लगायतका धार्मिक कार्यक्रम हुने भएकाले पूर्ण भक्तजनहरूमा सहभागिताका लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ।
6: महायज्ञमा हुने दैनिक कार्यक्रम यही जेठ 13 गति बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म कलश यात्रा, साथै प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म रुद्र अभिषेक, बेलपत्र अर्पण र पुरुषोत्तम भगवानको पूजा आराधना 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म, संगीतमय कथा प्रवचन साँझ 8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म, भजन कीर्तन र समापन सत्रमा महाआरती।
5: आयोजक शिव पाञ्चायन मन्दिर संरक्षण समिति।
7: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो ढोल बाराही 103.8 MHz।
8: फुटै खाए साह्रै मिठो, पकाए त स्वाकै, एक पाकेटले पेट भरी नि के हो भन्या अपाकै।
9: यो हो बोनस चाउचाउ।